0: केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
3: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
2: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
5: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावा दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 9052328700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
6: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
7: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
6: सच्ची?
7: ओ मुच्ची,
6: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
7: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
6: हुन एड्रेस भी लिखा।
7: लै लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबी कोक, यूनिट 5।
6: कॉल 6477067
4: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 ईव नजरो जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
8: वाह भाभी जी, मुबारकां, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने, लगदा है काफी खर्चा कीता है।
9: ए कमाल है जी, जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बराड़ नू 9056056805 9056056605।
10: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा,
11: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा।
4: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन, कैलडन, ब्रैम्पटन, माल्टन, मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 4165618882 416-561-8882।
2: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
3: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
2: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
12: सॉलिड बम्पर चमका मारे, मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे।
13: मठारू वेल्डिंग पुआओ मूस बम्पर, डियर बम्पर, डीजल टैंक लॉक, ट्रेलर रैम, टायर रैक, ट्रेलर रिपेयर, अल्युमिनियम प्लेट बम्पर।
14: कॉल सनी मठारू
13: 6474663055 6474606355।
14: मठारू वेल्डिंग, यूनिट 1, 98 रदरफोर्ड।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करोना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करोना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम पाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेते रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री। एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6 47 6 48 18 47। वाशरूम स्पेशलिस्ट थी पील रेनोवेशन।
3: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव। CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
4: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: लावल ओके
2: यो, आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: स्नाइपर
2: देखी कितने सौ

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है. तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी, बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी, कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
2: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
3: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स
4: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है
5: ओ यार काव्या होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ
6: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन
8: घर होवे या ऑफिस ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग
9: एक्सेस रैंप्स एक्सकवेशन ग्रेडिंग रीसर्फेसिंग ओवरले फार्म ड्राइववे पेविंग ए सब करदे ने आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com
10: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ
11: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਐਲਈਡੀ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ
11: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079 6477080079

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आया कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
2: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा देया।
1: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने। सेट रानी हार, छापा, मुंदरिया, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
2: हां, नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
1: तो मेरे जीजा ली घड़ी,
2: आहो, अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
1: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 रोड मालचंद इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
3: अगर तुहाडे बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाउणा चाहुंदे हो, तां इक्को इक नाम नूं याद रखना। पिछले 25 सालां तों कम्युनिटी दे विच मन्निया परमन्निया नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह, 416-451-4565। 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी। 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तों पाओ छुटकारा।
4: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
5: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
4: सच्ची?
5: ओ मुच्ची,
4: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
5: इना कोला सालां दा तजुर्बा।
4: हुन एड्रेस भी लिखा।
5: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबीकोक, यूनिट 5।
4: कॉल 647-706-9257
6: पिछले 20 सालां तों कस्टम वुड वर्किंग दियां प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुड वर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट, क्लोजेट, बार, टीवी यूनिट या डॉक्टर ऑफिस, डेंटल ऑफिस, ऑप्टिकल स्टोर दी वुड वर्किंग दा काम अपने बजट ते समय सिर करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो, मेपल वन किचन एंड बाथ इंक, 173 एडवांस बुलेवार्ड, जूनिट 34, ब्रैम्पटन। और का 9054580075, 9054580075। मेपल वन किचन एंड बाथ इंक। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करवाना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवनज रोड, जून 12 इन ब्रैम्पटन। और कॉल अवतार कटारिया 9056781200, 9056781200। कटारिया टूर्स and travel.
7: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
8: HK Movers,
7: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
8: For service with a smile, give us a call.
7: Call Mr. Harminder 416-524-6704,
8: 416-524-6704.
7: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
9: Long distance moving specialist,
7: HK Movers.
10: HK Movers.
3: Outfit ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਟੀਮ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਉ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-716-7653 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.teammanjeet.ca। कैनेडा दी मन्नी परमानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शाह ट्रांसपोर्ट नू चाहिदे ने कुछ एक ड्राइवर्स। इमीडिएट हायरिंग हो रही है, ओनर ऑपरेटर्स, टीम, कंपनी ड्राइवर्स, टीम, सोलो ड्राइवर्स चाहिदे ने जी कंपनी दे वास्ते। कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास दे रन्स, स्टेडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दित्ता जावेगा। वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390। शाह ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है at
10: 5758 Dixie Road, intersection 401 and Dixie. Number ek bari phir to 416-903-8390.
11: Car hove ya office, driveway ya parking lots, shopping center ya institute. Pathways paving le perfect hai Caledon paving.
12: Access ramps, excavation, grading, resurfacing, overlay farm, driveway paving. Is sab kar dene. Aaj hi contact karo Jasbal nu. It's 416-818-8900.
11: Or visit www.caledonpaving.com.
13: Ritz Furniture da message zara dhyan na suno. Sasta.

0: मैं अगे रवांगा, पहली सोटी मैं ही खावांगा, वर्कर्स दी वारी बाद विच आवेगी। उथे 3 महीने बाद साबका सीएम ते जलंधर तो एमपी चरणजीत चन्नी ते सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़े इको स्टेज ते कठे नजर आए। सचिन पायलट दी राइट साइड चरणजीत चन्नी ते लेफ्ट दे विच राजावड़े बैठे हुए सन। इस दौरान चन्नी ते राजावड़े गलबात करते दिखाई दिते गए। मंच तो ही चन्नी का नाम लैंदे कार्यकर्ताओं ने नारे भी लाए। चन्नी ने अपने पूरे भाषण च किते भी राजावड़े का नाम नहीं लिया। हालांकि इस दौरान विरोधी दल के नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि हैलो एक मंच ते सारे कांग्रेसी इकट्ठे तुहाडे सामने ने। पंजाब च सत्ता धिर दे आगुआं दी कथित धक्केशाही का मामला एक बार फिर तो सामने आया। इस बार हल्का लुधियाना दक्षिणी तो आम आदमी पार्टी की विधायिका रजिंद्रपाल कौर छीना चर्चा च ने। सोशल मीडिया से वायरल हो रही एक वीडियो च दिखाया गया है कि विधायिका की गड्डी एक ट्रक के पिछे सी। ट्रक चालक वालों लंघन लई राह देण च देरी होण ते विधायिका कथित तौर ते नाराज हो गए। ट्रक नूं रुकवाया ते पिछे आ रही गड्डी च उतर के विधायिका ट्रक ड्राइवर वल जांदी दिखाई दिंदी है। उसने ड्राइवर नूं थले उतरन लई कहा ते इस तों बाद बहस करन लगी। देखदे ही विधायक वालों ड्राइवर नूं थप्पड़ भी मार दिता गया। चश्मदीदां दे मुताबिक ड्राइवर दा कोई कसूर ना होण दे बावजूद उसनूं थप्पड़ मारे जाण ते हर कोई हैरान सी। इह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई है जो कि हुण सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। दूजे पासे अपना बचाव करदिआं आप विधायक रजिंद्रपाल कौर छीना ने कहा कि घटना डाबा रोड दी है। उन्हां दस्सिआ है कि उस इलाके च भारी गड्डियां दे लांघे ते रोक लाउण दे लई डीसी ते होर अधिकारियां नूं पहले शिकायत कर चुके सन। उन्हां कहा कि मैनूं इलाका निवासियों तो शिकायत मिली सी कि ट्रक चालक गड्डियां नूं बड़ी लापरवाही नाल चला रहे ने, इस करके इस ड्राइवर नूं रोकिया गया ते उस तों गड्डी दीआं चाबियां मंगीआं गईआं। मेनू बदनाम करन लई विरोधी धिर ने इस नूं गलत रूप दे दित्ता।
1: खबरां दे इस बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे अर्ज चावला। घर सेल करना चाहुंदे हो या फिर बाय या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो, कॉल अर्ज चावला 416-303-1515 416-303-1515।
0: कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसीज ने पंजाब दे संबंधित 4 नौजवानां नूं जबरदस्ती उगराही ते संगठित अपराधिक गतिविधियां च शामिल होण दे दोष हेठ कैनेडा तो रिपोर्ट कर दिता है। बलविंदर सिंह, जसमीर सिंह, अमितोज बाजवा ते साहिबजोत सिंह नूं इमीग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट तहत अपराधिक संगठनां दे नाल संबंध ते गंभीर अपराधां दे लई अयोग पाया गया। इन्हां चारां दे विरुद्ध जबरदस्ती उगराही, गोलीबारी ते हिंसक वारदातां दे मामले दर्ज ने। एजेंसी ने कहा कि लंघे साल भी 23,160 लोगों नूं उन्हां दे देश वापस भेजा गया क्योंकि इन्हां विचों 1,010 अपराधिक कारवाईयां दे नाल संबंधित सन। सीबीआई वालों जांच किए जा रहे रिश्वतखोरी के मामले च पंजाब पुलिस के मुअत्तल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर वालों पाएगी दूजी जमानत अर्जी ते सुनवाई करदिआं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार नूं कहा कि मामला 100% खारिज करन दा है। सीबीआई वालों भ्रष्टाचार के मामले च गिरफ्तार किए जाने तों बाद भुल्लर 16 अक्टूबर 2025 तों हिरासत च ने। भारत के मुख्य जज सूर्यकांत की अगवाई वाले 3 जजा की बैंच ने पुछा कि मामला 100% खारिज करन दा है, की तुसीं इस नूं खारिज करवाना चाहुंदे हो या बाद विच। सुनवाई च 4 हफ्तियां दी मुलतवी करदिआं बैंच ने संकेत दिता कि कुछ अहम गवाहां दे बयान दर्ज होण तों बाद ही जमानत अर्जी ते विचार कीता जावेगा। भुल्लर दे वकील ने दलील दिती कि शिकायतकर्ता ते इक मुख गवाह दे बयान हाले तक दर्ज नहीं हुए है। उन्हां सर्वोच्च अदालत नूं 2 शैडो गवाहां दे बयान दर्ज करन दी इजाजत देण दी बेनती कीती है। 10 अप्रैल नूं सर्वोच्च अदालत ने भुल्लर नूं जमानत देने तों इनकार कर दिता सी। उन्हां कहा कि जेकर 2 महीने च सुनवाई शुरू नहीं हुंदी है तां जमानत लई मुड़ पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट च पहुंच कर सकदे ने। अदालत ने नोट कीता कि हाई कोर्ट दा उन्हां नूं जमानत ना देने दा फैसला सही है क्योंकि कुछ अहम गवाहां दे बयान दर्ज कीते जाने काफी जरूरी ने। इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, धन्नवाद।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।
3: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਨੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ।
4: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
3: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।
5: ਘਰ ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੁੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਲਡ ਟੂ ਲਾਸਟ, ਮੈਨਸੂਰੀ ਤੇ ਸਟੋਨ ਵਰਕ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਪੈਡੀ

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM एंड 6 PM टू 10 PM 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस की प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
3: जो आया
4: मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नू विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लुट स्फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लुट स्फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।

0: तन ते पाया कपड़ा जो भी पाड़ पाड़ के लाउना वे मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: शहर दी आवाज दिलां दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।